0: Mirchi. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंग।

0: It's hot.
1: मिर्ची, it's hot.

रोमांस एक ऐसी चीज है ना कि अगर तुमने डिसाइड कर लिया टू बी इन अ रिलेशनशिप देन इट्स अ लॉट लाइक अ बॉक्सिंग मैच, और बॉक्सिंग मैच में एक दो मुक्के तो खाने ही पड़ते हैं, और अगर तुम उन मुक्कों के लिए तैयार नहीं हो तो उस बॉक्सिंग मैच एके रिलेशनशिप में घुसने से पहले 180 बार सोच लिया करो। ये ज्ञान की अमेजिंग टिप्पणी आज मेरा भाई मेरी कजन को फोन पर बता रहा था, बिकॉज शी वॉज हैविंग सम रिलेशनशिप ट्रबल्स एंड शी सेड यार क्या करूँ मैं भैया ये वो, और मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि करण क्या पीस ऑफ एडवाइस देगा, बिकॉज करण इज नॉट द लव गुरु इन द हाउस आई एम। लेकिन उसे जब ये एडवाइस दी ना मैं काफ़ी शोक थी, आई वाज लाइक यार ये तो बहुत सजेशियस एडवाइस है। और अगर आप भी ऐसे रिलेशनशिप में 5-6 मुक्के खा चुके हो ना और आपको बस किसी से बात करनी है, वेंट करना है या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, व्हाई डोंट यू हिट मी अप, आई विल बी सो हैप्पी टू टॉक टू यू। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, हिट मी अप, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। ये वो शो है जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक। सम स्पेशल शाउट आउट्स, ऑल दैट एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10। पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे गिरा ये गाना, फीचरिंग ज़ारा खान एंड स्केल्स। गाने का नाम है मूव बॉडी। दो हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। काउंटडाउन की शुरुआत With Move Body on Gana number 10. At RJ Kanega on Instagram पर कोई गाना शेयर करना, कोई बातें बतानी हो, बिंदास hit me up. Stay tuned for the full countdown. This is Move Body playing right next for you only on Gana Indie Top 10. बंदी का नाम है कनेका। Enjoy. Number 10.

0: बहुत कुछ हुआ, क्या हुआ पता नहीं। ज़ारा खान का गाना दैट वाज मूव बॉडी दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। ये गाना जब इस काउंटडाउन से बाहर भी हो जाएगा तो शायद याद नहीं रहेगा, बिकॉज इट डिड नॉट मेक मी फील एनीथिंग एंड फीलिंग इज एवरीथिंग।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: आई सेड व्हाट आई सेड। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। दिस शो इज अबाउट द सॉन्ग्स व्हिच मेक यू फील समथिंग। पॉप सॉन्ग्स जो आर्टिस्ट अपनी आजादी से अपनी कहानी सुनाने के लिए लिखते हैं। किसी बड़ी फिल्म निर्देशक एक्टर एक्ट्रेस के लिए गाने नहीं बनते हैं, पर हर तरह के गाने होते हैं। कुछ मासी एंड कुछ ऐसे गाने जो शायद इतने बड़े स्केल पे नहीं फटते, लेकिन जितने लोग उन्हें सुनते हैं वो कुछ फील करने पे मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही एक गाने को आज हम शाउट आउट देने वाले हैं। गाने का नाम है तारे बाय फरक। इससे पहले कि मैं वो गाना चलाऊं, आई वॉन्ट यू टू थिंक समथिंग। सो

परिंदा पिंजरे में इतने दिन रह रहा है कि जब दरवाजा खुला तो उड़ना ही भूल गया। जिंदगी भर जिस आसमान को देखता रहा, अब जब वो आसमान उसके सामने है, उसे डर लगने लगा कि अभी आगे कैसे जाना है, पहला कदम कैसे लेना है। एंड एक्चुअली ये परिंदे की बात ही नहीं है, ये हम सब हैं। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं, टू बी ऑनेस्ट, एक चुल होती है ना, एक छोटा सा कीड़ा छुपा बैठा है। कुछ तो करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। कोई लिखना चाहता है, कोई गाना चाहता है, किसी के अंदर कोई कलाकार, फिल्म, पेंटिंग, कोई आइडिया जिसका बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। पर हमने क्या किया, उसको लेके सारी विशेस को एक अलमारी के अंदर डाल दिया कि चलो पहले जिंदगी बना लेते हैं, फिर सोचेंगे। अब वो अलमारी बंद ही रह गई और वो सपना अंदर ही रह गया। लेकिन मान लो एक दिन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, वो जो सारी विशेस हैं वो पूरी हो गई, अलमारी खुल गई, सपना बाहर आ गया, जो परमिशन चाहिए थी वो मिल गई, जो पैसा चाहिए था, वक्त चाहिए था, वो आपके सामने है, आसमान दिख रहा है खुला सामने, तो फिर सोचने वाली बात है कि क्या मैं और आप एकदम उड़ जाएंगे या उस दरवाजे को देखते ही रहेंगे और डर जाएंगे उस परिंदे की तरह, जो अब इतना यूज्ड हो गया अपनी सिचुएशन से, अपने सर्कमस्टेंसेस से, कि आज़ादी कैसी लगती है वो भूल ही चुका है। इसका कोई सही जवाब नहीं है और आपको मुझे तो बिल्कुल नहीं बताना है, पर सोचने वाली बात है। और यही सोचते सोचते अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, ये गाना बिल्कुल आपको उसी कश्मकश में लाके खड़ा करेगा। पहचान छोड़ दी जीरो से दोबारा शुरू करने वालों के लिए, आर्टिस्ट का नाम है फरक, गाने का नाम है तारे। It's playing right next for you on Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

0: लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।
1: गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना।

0: यार ये गाना ऐसी फील्स को हिट करता है जो जेन्युइनली मैंने छुपा दी थी अपने अंदर। गाने का नाम है तारे बाय फरक, साथ में उनकी आवाज है शाश्वत बलान की। अभी सिर्फ सुनना नहीं है, ठीक है, अपने अंदर के उस छुपे हुए आर्टिस्ट को निकालो। @RJKanika इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ दैट जो भी आप जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, व्हाटएवर यू डू, अगर आपको आपकी विश पूरी करने का एक चांस मिल जाए तो क्या करोगे, क्या है वो अंदर की चिल। @RJKanika इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। हर्ष नसी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है साडी सुन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विस यादव, पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके साडी सुन इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 9। उसके बाद एक नई नवेली एंट्री, गाने का नाम आरजू बाय नूर खान एंड मधुर एक्सो। आरजू ने डेब्यू किया है दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: चुप कर लंघ जावे कोल दी तू, संघ जावे को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे।

0: एश किंग की आवाज में। गाने का नाम है किनिया सोनी, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले संजू राठौड़ की आवाज में हमने सुना बैंगल्स, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो, स्वागत है आपका, दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर अ गाना स्पॉटलाइट ऑफ द वीक। एंड आज मैं जिस आर्टिस्ट से आपको मिलवाना चाहती हूँ, ट्रस्ट मी, इनके गाने को सुनने के बाद आप ये सवाल पूछोगे कि यार कनिका इससे पहले क्यों नहीं रिकमेंड किया। आर्टिस्ट का नाम है खोसला रघु। इस नाम में दो आर्टिस्ट हैं, ऋषभ रघुवंशी एंड संचित खोसला। टुगेदर दे मेक खोसला रघु। इनकी स्टोरी इज टफ ऑफ ड्रीम्स। ये दो दोस्त हैं, बोर्डिंग स्कूल में साथ में पढ़ते थे। एंड आपने भी अपने दोस्त से कभी तो कहा होगा कि यार साथ में कुछ शुरू करते हैं, साथ में म्यूजिक करते हैं, साथ में ये करते हैं, और कहीं ना कहीं वो रह जाता है कुछ लोगों का। पर संचित एंड ऋषभ एज आर्टिस्ट हम सबका वो सपना जी रहे हैं, एंड दे आर सो गुड एट व्हाट दे डू। कोई बहुत बड़ी बैकिंग के साथ उन्होंने शुरू नहीं किया, काफी ऑनेस्ट सॉन्ग राइटिंग एंड देयर अबिलिटी टू कनेक्ट विद देयर ऑडियंस। गानों में आपको फुल कंटेम्प्रेरी पॉप, क्लासिकल, हैवी वोकल्स, एवरीथिंग दैट मेक्स अस फील लाइक ये कौन से वाला गाना है, वो सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। इट साउंड्स वेरी न्यू एंड मॉडर्न येट रूटेड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल। आई रिमेंबर मैनी कॉन्वर्जेशन विद बोथ ऑफ देम, एंड वो कभी भी ट्रेंड्स के पीछे भागते ही नहीं है। दे जस्ट मेक द सॉन्ग्स जो उन्हें पसंद हैं, एंड उनके कई सारे गाने इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी ट्रेंड कर चुके हैं। सो येस, दे आर ट्रेंड सेटर्स। जो गाना आज हम स्पॉटलाइट करने वाले हैं, उस गाने का नाम है बेवजह। ये उस पहले वाले प्यार की बात है जो धीरे से ना आपकी पूरी दुनिया पे टेक ओवर कर लेता है। उनकी राइटिंग, म्यूजिक बहुत ऑनेस्ट है। अगर आप इंस्टाग्राम पे इन दोनों को देखेंगे तो जिस तरह से वो म्यूजिक बनाने के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, वो भी बहुत ऑनेस्ट है। आई स्वेयर मैंने कोई ऐसे आर्टिस्ट नहीं देखे जो अपने फैंस के साथ ये तक शेयर करते हैं कि इस गाने को बनाने के पैसे कितने लगे, इसका हमने कितना कमाया, अगर आप ये शुरू करोगे तो ये गलती मत करना। That's how you build loyal listeners. And Khosla Raghu, Gaana Indie Top 10 की तरफ से super mad respect to you guys. अपने radio sets की volume बढ़ा लीजिए। गाने का नाम है बेवजह, Khosla Raghu की नई album का पहला गाना। It's playing right next for you only on Gaana Indie Top 10। बंदी का नाम है कनिका। Enjoy.

0: सबसे रघु का नया नवेला गाना, गाने का नाम है बेवजह, फीलिंग्स हैं बिल्कुल की दिल है जो मानता नहीं। एड आरजे करेगा ऑन इंस्टाग्राम पर जाओ, कोई गाना आर्टिस्ट जिन्हें आप स्पॉटलाइट देना चाहते हो मेरे साथ आके शेयर करो, वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाला गाना इज अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी। 8 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, उड़ी उड़ी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 5।

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4।

0: दिलजीत दोसांझ की आवाज, गाने का नाम है डीलर। 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होकर डीलर इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाएं, मेरा हैंडल इज @RJKanika। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

And the song we're going to feature this week is... गाने का नाम है तेरे मेरे साथ और आर्टिस्ट का नाम बता देती हूँ पर बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती बिकॉज लकी अली की आवाज ऐसी है कि पहले सेकंड में हम पहचान जाते हैं कि ओ ऑफ कोर्स दिस इज लकी अली। अब मेरा काम तो गाने के बारे में बात करना, गाने सुनाने का है, लेकिन कभी कभी जब सड़कों पे निकलती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, उनसे उनके रिएक्शंस जानने की कोशिश करती हूँ अबाउट दीज लेजेंडरी आर्टिस्ट, तब समझ में आता है दैट लकी अली जैसे आर्टिस्ट ने पॉप म्यूजिक के लिए कितना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है। उन्होंने इतने बड़े हिंदी फिल्मों के लिए गाने किए हैं जैसे एक पल का जीना, अनजाना अनजानी में उनका गाना था, पर जितने लोगों से बात करो उनका नाम सुनते ही सब उन्हें एक पॉप स्टार बोलते हैं। उनके अपने पॉप सॉन्ग्स, वो खुली सड़क, वो गिटार, वो लाल गाड़ी, धूप में लकी अली गाने गा रहे हैं, और ये किसी फिल्म के गाने नहीं है, ये उनकी अपनी एल्बम के गाने हैं। दैट्स जस्ट द मैजिक दैट दिस मैन हैज। आप कभी इनका लाइव परफॉर्मेंस अटेंड करें, क्राउड कमाल की होती है, आपको 70 साल के लोग भी मिलेंगे और 20 साल के लोग भी। इंटरनेट पर जो उनकी क्लिप्स हैं, उनके गानों के वीडियोस हैं, उनके कमेंट्स के नीचे हर उम्र के लोग मिलेंगे और एक ही जैसी बातें करेंगे। वन ऑफ दोस रेयर आर्टिस्ट जो सारी जनरेशंस के फासले मिटा रहे हैं। और जो ये वाला गाना है तेरे मेरे साथ, अक्स एल्बम का गाना है, इसका वीडियो क्यूबा में शूट हुआ था। धूप, खुली सड़क, एकदम फ्री फीलिंग। गाना सुन के आप बहुत हल्का हल्का फील करोगे और सनी फील करोगे। इट्स वेरी सनशाइन वाला सॉन्ग, टॉक्स अबाउट कनेक्शन बिटवीन टू पीपल, कि जब सारा जग सोता है। ये गाना उस अजीब से खास से कनेक्शन की बात करता है जो वर्ड्स में बोलना मुश्किल है, तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लो। लकी अली की आवाज में दिस इज तेरे मेरे साथ प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन कैसेट क्लासिक। पत्नी का नाम है आरजे कनिका। एंजॉय।

0: अगर सनशाइन इमोजी एक गाना होता ना तो लकी अली का दिस सॉन्ग वुड बी इट बिकॉज वाओ हाउ डू यू डू दिस लकी अली की आवाज में. दिस वाज तेरे मेरे साथ ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर जल्दी आओ. 90s 2000s का वो जो भी गाना है जिसको सुन के आज भी आप बड़े खुश हो जाते हो ना कि यार इस गाने में ही बात थी, वही वाला गाना जानना है मुझे एट आरजे कनिका पर आके हमारे साथ शेयर करो. मैं और अश्का हम दोनों आपकी सारी सजेशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की तरफ बढ़ते हैं. आदित्य रिखारी रावत और कुटले खां का गाना, गाने का नाम ए अजनबी. 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार ए अजनबी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: Number 3.

0: इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका, शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10। ये वो शो है जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री थी, हमने अपने 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने को शाउट आउट दिया। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर पूरा कर चुके हैं। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रीकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। ज़ारा खान का गाना मूव बॉडी दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद हर्ष नुसी का साडी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। नूर खान एंड मधुर एक्सो के आरजू ने इस हफ्ते डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 8। देन संजू राठौड़ का बैंगल्स ऑन गाना नंबर 7। एश किंग का किनिया सोनी 4 हफ्तों से स्ट्रॉन्ग दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी 8 हफ्तों से स्ट्रॉन्ग ऑन द काउंटडाउन दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत दोसांझ का डीलर इज द मोस्ट सीनियर सिटीजन सॉन्ग ऑफ द काउंटडाउन 19 हफ्तों से बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। 15 हफ्तों से डटा हुआ ये गाना आदित्य रिखारी रेवटों कुटले खा का गाना अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग कॉल्ड ए अजनबी दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। एंड द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, कोई रीशफल नहीं हुआ है, ये दोनों गाने इन पोजीशंस पर डटे हुए हैं 18 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बैरन दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। एंड द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, मिट्टा रॉर की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा, 18 हफ्तों से ये गाना भी डटा हुआ है, शीशा दिस वीक ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 2।

Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot. The show.

0: याद बन के नहीं रहती, और शायद इसलिए आज हम एक अजीब ईरा में जी रहे हैं। फिल्में भी वापस आ रही हैं, कैरेक्टर्स भी वापस आ रहे हैं, सॉन्ग्स भी वापस आ रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को भी पता है यादें बनाना उन्हें दोबारा बेचने से कई ज्यादा मुश्किल होता है। ऑगस्ट शायद इसी सवाल का जवाब लेकर आ रहा है। यू गॉट टॉक्सिक, यू गॉट आवारापन, यू गॉट बंटवारा 1947, तो क्या 2026 सिर्फ हिट्स देगा या फिर हमें कुछ ऐसी फिल्में और गाने भी देगा जिनके बारे में हम 10 साल बाद भी बात करेंगे। इसी होप के साथ वेलकम टू द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का डेफिनेटिव बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन, एंड आई एम सुरेन सुंदरम।
1: नंबर 20।

a banger by Jasmine Sandlers on number 20 from Dhurandhar. और number 19 पर डेब्यू कर रहा है आंखों से तूने ये क्या कह दिया, एक ऐसे गाने का रीमेक। इसके ओरिजिनल वर्जन को किसी मेकओवर की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। अब मजेदार बात यह है कि ये जो फिल्म है भाई तेरा स्टार है, उसके अंदर हीरो राघव जुयाल डायरेक्टर से खुद पूछते हैं क्लासिक गाना रीमेक क्यों कर रहे हो, और जवाब मिलता है रिकॉल वैल्यू। बस अफसोस इतना सा है, रिकॉल तो सिर्फ ओरिजिनल का रह जाएगा, नया वर्जन सिर्फ उसकी डीजे मिक्स कॉपी बन के रह जाएगी। फिर भी काउंटडाउन पर उसकी जगह बन रही है। दिस इज आंखों से तूने क्या कह दिया फ्रॉम भाई तेरा स्टार है, स्टारिंग राघव जुयाल। इस हफ्ते गाना नंबर 19। नंबर 19।

0: wanna play? Fall in line, little boy. Cause you can't run away. There's nowhere to hide. There's nowhere to go. I've shattered the ceiling. There's blood on the floor. A fight to the finish. Or a kiss goodbye. Get your last wish, baby. Cause you're gonna die.
1: Have you noticed? जब जज्बात बहुत बड़े हो जाते हैं तो लोग बोलना कम कर देते हैं, गाने चला देते हैं। पिछले कुछ दिनों में देश ने बहुत कुछ देखा, बहुत सारी आवाजें सुनी, बहुत सारे नारे सुने, लेकिन एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। हर जगह वही तीन गाने सबको सुनाई दे रहे थे, एक जो इस देश की पहचान बन गया है,

दूसरा जो अब हर मुश्किल घड़ी में इस देश को मोटिवेट करता है। और फिर ये तीसरा और आखिरी गाना जो अपने अंदर की आवाज को झंझोड़ता है। सोचिए ये तीनों गाने आज के नहीं है, दो दशक से ज्यादा पुराने हैं। फिर भी जब इस जेनरेशन को अपनी फीलिंग्स को आवाज देनी थी, इन्होंने कोई नया गाना नहीं ढूंढा, वापस इन्हीं गानों तक लौटाए। एक बार जो गाना आवाज बन गया, उस आवाज को दबाना मुश्किल होता है। हर जेनरेशन उन्हीं गानों को अपना लेती है जो उनके इमोशंस को उनसे बेहतर समझ ले। इस हफ्ते मेरा रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक एआर रहमान की वो कॉम्पोजिशन जिसने हर बार एक नई जेनरेशन के साथ फिर से जन्म लिया, फिर से उस पीढ़ी की आवाज बनी। टॉप 20 रीवाइंड।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 10.

0: बस यही तो कमाल है हिंदी फिल्म म्यूजिक का। कुछ सेकंड पहले तक आरी आरी जैसे गानों के साथ खून तेजी से दौड़ रहा होता है, आपके अंदर इतना एड्रेनलिन भर जाता है कि लगता है कि दुनिया जीत लोगे, और अगले ही पल अगला ही गाना उसी दिल को धीरे से पकड़ लेता है, और आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। पिछले हफ्ते मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि आवारापन का वो गाना जिसका इंतजार सिर्फ फिल्म के फैंस नहीं पूरा म्यूजिक सर्किट कर रहा था, इस हफ्ते वो काउंटडाउन पर जरूर डेब्यू करेगा। तो बस प्रॉमिस पूरा करने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले आई नीड टू से दिस दैट आई लव अमाल मलिक। He's like my younger brother, और अमाल की कही हुई एक बात मेड मी फील सो सो प्राउड अबाउट हिम।
1: I'm the SRK of music and romance, who I believe another who soul travels just like me is Mithun. I think you know, like mere senior hai, but he's the only one I feel. And main har jagah sab bolta hu, yani egoistically nahi ki I'm the SRK of music and romance. Main hu, who I believe the best. But someone who always hum log mein ek yani competition nahi rahega, but I think someone who touches my soul on that level is him. Wo utni purity se he also works. So we are the only two people who are trying to do in our generation purest work.
0: यार कितनी खूबसूरत बात है। हर कंपोजर का अपना एक सिग्नेचर होता है, अपनी एक मेलोडी होती है, अपना एक इमोशन होता है, और जब एक कंपोजर दूसरे कंपोजर की सोच को इतनी इज्जत दे तो समझ लीजिए म्यूजिक सिर्फ कंपटीशन नहीं कॉन्वर्सेशन बन गया है। और इस कॉन्वर्सेशन का नया चैप्टर आज ऑफिशियली शुरू होता है ऑन द चार्ट्स, डेब्यूइंग स्ट्रेट ऑन नंबर 9 रश्मि विराग के लव्स, अमाल मलिक की कॉम्पोजिशन और अरिजीत सिंह की आवाज, ये आवारापन नंबर 9।

शरारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पता क्या है? मधुमंती बागची और जैस्मिन सैंडलर्स की आवाज नहीं, उसका मुखड़ा भी नहीं। इस गाने की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्ट्रेंथ है, उसके वो पहले कुछ सेकंड्स जहाँ गाना बस शुरू होता है और आपका दिमाग तुरंत बोलता है, ओह यस, दिस इज शरारत।

Am I right or am I right? यार मुझे लगता है कि म्यूजिक की दुनिया चुपचाप बदल रही है। आज गाने का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा उसका हुक बन गया है, क्योंकि वही रील्स पर और शॉर्ट्स पर ट्रेंड करता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था द कंपोजर्स गाने में सबसे ज्यादा प्यार उसकी शुरुआत पर खर्च करते थे। एक इंट्रो जो बिना एक भी लफ्ज बोले अपनी पहचान बना लेता था।

बस इतना ही, ना वोकल्स ना लिरिक्स। फिर भी अगर आप 2008 में थे तो आपको पता था हाथू है। शायद इसलिए कुछ इंट्रोस सिर्फ म्यूजिक नहीं होते, वो मेमोरी के फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं। एक बार सुन लो और सालों बाद भी इसे पहचानने में कभी गलती नहीं होगी। वैसे ही इस हफ्ते नंबर 4 पर जो गाना है, उसकी पहचान भी उसका इंट्रो ही था, चुनरी चुनरी। लेकिन जिस गाने की हम इतनी बात कर चुके हैं, जिस गाने का मैं इतना जिक्र कर चुका हूं, दैट इज गोइंग टू बी माय पिक ऑफ द वीक। जन्नत की पूरी एल्बम में शायद सबसे अंडररेटेड ट्रैक, लेकिन मेरे लिए सबसे प्यारा, वही इंट्रो जो दिल पर अब भी दस्तक दे रहा है, सॉन्ग बाय माय ऑल टाइम फेवरेट सिंगर के प्रीतम दा की धुन। हाँ तू है।

और दूसरी हिट फिल्म का सीक्वल आ चुका है वेलकम धमाल दे दे प्यार दे। देन यू आल्सो गॉट सम कल्ट क्लासिक्स लाइक बॉर्डर एंड गदर। एंड लगता है कि बॉलीवुड को एक ही चीज का नशा है एंड दैट इज फ्रेंचाइजेस। लेकिन इतने सारे सीक्वल्स के बीच एक नाम है जिसकी कमी हर साल और ज्यादा महसूस होती है और छुपती है। धूम जैसे फिल्म कहां थी, ये स्टाइल था, एटीट्यूड था। पहली धूम में जॉन अब्राहम ने बाइक्स को कूल नहीं बनाया, उन्हें एस्पिरेशनल बना दिया। सबको एक सुपर बाइक चाहिए थी। फिर आए ऋतिक रोशन और धूम 2 ने फ्रेंचाइज को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। डूड ऋतिक नेवर लुक्ड एज सेक्सी एज ही डिड इन धूम 2। एंड उसके बाद 7 साल बाद सिर्फ खामोशी। यस, आमिर खान की धूम 3 आई जरूर, लेकिन वो दीवानगी वापस नहीं आई। और हाल फिलहाल आप सुन रहे होंगे कि इस सीरीज को रीबूट करने की प्लानिंग चल रही है। रणबीर कपूर का नाम डिस्कस हो रहा है, फिर ये पता लगता है दैट स्क्रिप्ट की वजह से रणबीर भी एग्जिट कर गए। सच कहूं, मुझे नए विलन की बिल्कुल फिक्र नहीं है। मुझे सिर्फ इतना लगता है कि जिस फ्रेंचाइज ने हिंदी सिनेमा को इतना स्वैग और इतना कूल दिया, उसे सिर्फ कमबैक नहीं, ब्लॉकबस्टर कमबैक मिलना चाहिए। सो YRF, टेक योर टाइम, जितना वक्त लेना है आप ले लो, बस धूम को स्पाई यूनिवर्स वाले रास्ते ना ले जाना। तब तक YRF का दिया एक और सुपरस्टार जिसने शुरुआत की थी विद बैंड बाजा बारात, आज बॉक्स ऑफिस पर सबकी बैंड बजा रहा है। एक बार फिर माय मोस्ट फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग ऑफ लास्ट ईयर, इट्स स्टिल नंबर 1। दिस इज गहरा हुआ स्टारिंग रणवीर धुरंधर सिंह। नंबर 1।

0: एक और हफ्ता और गहरा हुआ फिर से नंबर वन। सच कहूं लगता ही नहीं कि धुरंधर का मैजिक बिल्कुल फेड हुआ है। इस एपिसोड में वैसे मुझे बहुत मजा आया, मेमोरीज की बात की, नई ट्यून्स की बात की और उन कहानियों की भी जो सिर्फ फिल्मों में नहीं हम सबके अंदर रहती हैं। आई होप यू लाइक द एपिसोड एज वेल। अगली बार फिर मिलेंगे हियर ऑन द मिर्ची टॉक 20। अंटिल देन, सुरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: and Mitchie. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का

0: Mirchi, it's hot.
1: Let's go crazy.

0: Mirchi, it's hot.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई बजा

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और मिर्ची मॉर्निंग्स जो है ऑफिशियली ऑन एयर है। अगर फिलहाल तुम ट्रैफिक में अटके हो, ट्रेन में लटके हो, या फिर किचन में चाय और जूम मीटिंग्स दोनों एक साथ मैनेज कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हैशटैग रिस्पेक्ट। लेकिन एक प्रॉमिस करो कि स्ट्रेस को बैक सीट में आज बिठा दोगे, क्योंकि अगले कुछ घंटों तक सिर्फ और सिर्फ गुड मिर्चीदार वाइब्स होनी चाहिए। मस्त बॉलीवुड के बैंगर्स मैं तुम्हारे लिए प्ले करने वाली हूँ, देसी फील्स रहेगा क्योंकि हम देसी लोग बातें करने वाले हैं, और साथ साथ में काफी सारी ऐसी बातें करने वाले हैं जो तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड से करते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम योर BFF। वैसे देसी लोग दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, एक चीज कभी नहीं बदलती है, फ्रिज में लेफ्ट ओवर्स देखकर हम सब कहते हैं यार ये कल और ज्यादा टेस्टी लगेगा। ऐसा तुम भी करते हो क्या? मैं तो जिस दिन खाना ऑर्डर करती हूँ उसे फ्रिज में रख के उसके अगले दिन उसे खाने के लिए ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। आई डोंट नो इफ यू डू दैट और नॉट, बट आई लव लेफ्ट ओवर बिरयानी और लेफ्ट ओवर करीज। अच्छा, आज का मिशन काफी सिंपल है, थोड़ा सा हंसेंगे, थोड़ा सा हंसाएंगे, थोड़े से गाने सुनेंगे और फुल ऑन मिर्चीदार वाइब्स फैलाएंगे। फटाक से मुझे फॉलो कर लो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टाग्राम पर, और मेरा फोन नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। यू कैन व्हाट्सएप मी हियर, एंड राइट नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला और तुम सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और चलो टाइम मशीन को रिवर्स गियर में डालते हैं। सबसे पहले चलते 1806 में, जब द होली रोमन एम्पायर ऑफिशियली खत्म हो गया था, एंड फिर 1825 में

अमेरिका ने भी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की। 1945 में आज के दिन हिस्ट्री का एक बहुत ही इमोशनल चैप्टर था। हिरोशिमा पर पहली बार वॉर टाइम में एटॉमिक बॉम्ब यूज हुआ था। एक ऐसा दिन जो दुनिया को याद दिलाता है कि पीस की वैल्यू क्या होती है। 1965 में अमेरिका में वोटिंग राइट्स एक्ट साइन हुआ, जिसने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन वोटिंग को बैन कर दिया। और इंटरनेट लवर्स 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने दुनिया की फर्स्ट एवर वेबसाइट पब्लिश की। सो टेक्निकली उसी की वजह से आज तुम और मैं मीम्स देखते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और रात को 2 बजे सिर्फ 5 मिनट के नाम पर रील्स देख देख कर सोना भूल जाते हैं। वैसे सोशल्स पर भी हम इसीलिए मिले हैं। मिर्ची प्रिंस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। और चलो अब देखते हैं कि आज का वेदर का हालचाल क्या है, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। देखो, सुबह 9 बजे से सनशाइन अपनी एंट्री मारने वाला है विद 81 डिग्री फारेनहाइट। 10 बजे थोड़े से पासिंग शावर्स का चांस बन सकता है, अगेन सिर्फ 20% का। तो आज अम्ब्रेला ले जाएं या नहीं, इसका सस्पेंस बनाने की जरूरत नहीं, कैरी इट विद यू इन केस यू नीडेड। सुबह से टेम्परेचर 75 डिग्री फारेनहाइट से लेकर फ्लक्चुएट करने वाला है 96 डिग्री फारेनहाइट तक, और 11 बजे तक वेदर हो जाएगा पार्टली सनी विथ वार्म 86 डिग्री फारेनहाइट। ओवरऑल आज का हाई रहने वाला है अराउंड 93 डिग्री फारेनहाइट तक, और रात को लो जाएगा 75 डिग्री फारेनहाइट तक। ह्यूमिडिटी दिन भर 60 से लेकर 72% तक के बीच रहने वाली है, और साउथ वेस्ट से विंड 5 to 8 माइल्स पर आवर आने वाली है, और यूवी इंडेक्स आज के लिए है 7। इसका मतलब है सनग्लासेस और सनस्क्रीन दोनों को आज एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ेगी, यानी कि बाहर जाते टाइम कैरी योर सनग्लासेस विद यू, ऑल्सो योर सनस्क्रीन विद SPF 50++++, इसे लगाना बिल्कुल मत भूलना। एंड यू कैन रीअप्लाई आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स। एंड साथ में कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, हैव अ लॉट ऑफ वाटर। और आज थ्रू आउट द डे टेम्परेचर 93 डिग्री फारेनहाइट से लेकर 96 डिग्री फारेनहाइट के जैसा फील हो सकता है, और आज बहुत ही कम लेकिन चांसेस हैं हल्की हल्की बरसात के। और साथ में अपने मिर्ची वाइब्स बनाए रखो, मुझे यानी कि प्रिसिला को अपने साथ चिपकाए रखो। मुझसे बातें कर सकते हो तुम इंस्टा और एक्स पर, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी टाइम है मिर्चीदार झमाझम बैंगर्स का, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

Mirchi. It's hot.

Hey there, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में और ये है इस घंटे की टॉप थ्री अपडेट्स ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनवाइटेड राघव चड्ढा एंड 42 अदर न्यूली इलेक्टेड राज्यसभा एमपीज फॉर अ ब्रेकफास्ट मीटिंग इन न्यू दिल्ली। रिपोर्ट्स से इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स। एंड नंबर टू पर ट्रेजिक स्टोरी कमिंग फ्रॉम एथेंस ग्रीस। ब्रिटिश चैरिटी वर्कर एलिजाबेथ जेन रॉस वॉज फाउंड डेड आफ्टर बींग रिपोर्टेड मिसिंग। ग्रीक पुलिस हैव अरेस्टेड अ सस्पेक्ट एंड द इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग। एंड लास्टली स्पेन से एक हार्ट वार्मिंग स्टोरी। एक को लगा कि वाइल्ड फायर में उनके 3 डोंकीज शायद बच नहीं पाए हैं, लेकिन जब वो वापस घर लौटी तो तीनों के तीनों डोंकीज सेफ मिले। यानी कि टेक्निकली वो डोंकीज थे लेकिन थे बड़े स्मार्ट। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 विद मी प्रिसला। मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स। और अगर तुम भी रामायण का वेट कर रहे हो तो कैलेंडर्स निकाल लो। मेकर्स ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि फिल्म का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दुनिया भर के थिएटर्स में 6th ऑफ नवंबर 2026 को रिलीज होने वाला है, दिवाली से सिर्फ 2 दिन पहले। परफेक्ट फेस्टिवल ब्लॉकबस्टर टाइमिंग है, राइट? और एक स्वीट सा लिटिल कोइंसिडेंस भी है, ये डेट लीड एक्टर रणबीर कपूर की डॉटर राहा के बर्थडे से भी मैच करती है। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं नमित मल्होत्रा, डायरेक्ट कर रहे हैं नितेश तिवारी और कास्ट में है सई पल्लवी एंड यश, जो कि सीता एंड रावण का रोल प्ले कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली। अब एक्सपेक्टेशंस तो नेचुरली हाई होने ही वाली है। वैसे दिवाली सीजन आ रहा है, मूवीज भी, मिठाई भी और ढेर सारा स्पार्कल भी। और स्पार्कल से याद आया, तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स, जहां पर तुमको मिल रहा है अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, और साथ साथ में तुम्हें पुराने गोल्ड को एक्सचेंज कराने पर, जो कि 18 कैरेट्स एंड अबव हो, उसको एक्सचेंज कराने पर 0% डिडक्शन भी मिल रहा है। ऑफकोर्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है, लेकिन ऑफर्स बहुत ही अमेजिंग है। तनिष्क का फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स चल रहा है, इसका फायदा उठाना बनता है, और अभी फायदा उठाना बनता है मिर्ची का, क्योंकि आने वाले हैं मिर्चीदार बैंगर्स ओनली फॉर यू। मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। इंस्टा और एक्स पर भी मुझे अपने साथ रखो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

लगूंगा। गुड मॉर्निंग मैं बर्थडे के रॉक स्टार। अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो सबसे पहले मिर्ची मॉर्निंग्स और मेरी तरफ से हैप्पी टू यू है, वार्म हग। एंड साथ में तुम्हारी लाइफ का वाईफाई हमेशा फुल सिग्नल पे हो, चाय कभी भी ठंडी ना हो, कॉफी की स्ट्रेंथ कभी कम ना हो और अमेज़न के पैकेजेस आउट फॉर डिलीवरी से सीधा डिलीवर्ड हो जाए विद इन सेकेंड्स। चलो अब देखते हैं कि आज तुम्हारे साथ कौन से लेजेंड्स अपना बर्थडे शेयर करते हैं। ऑस्कर विनिंग सुपरस्टार मिशेल यो, मास्टर ऑफ ट्विस्ट एंडिंग्स एम नाइट शयमालान एंड एकेडमी अवार्ड नॉमिनेटेड एक्ट्रेस वेरा फर्मिगा, हैमिल्टन स्टार लेस्ली ओडम जूनियर और स्पाइस गर्ल्स की फॉरएवर एनर्जेटिक जेरी हैलोवेल यानी कि जिंजर स्पाइस। और अब बात उन लेजेंड्स की जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने पेनिसिलिन डिस्कवर करके मॉडर्न मेडिसिन को डायरेक्शन दिया, पॉप आर्ट के किंग एंडी वॉरहोल एंड टेलीविजन आइकॉन लूसील बॉल, साथ में द लेजेंडरी इंग्लिश पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और फॉर्मर यूएस फर्स्ट लेडी एडिथ रूजवेल्ट। तो अगर आज तुम्हारा भी हैप्पी बर्थडे है ये याद रखो, तुम सिर्फ एक साल ओल्डर नहीं हुए हो, तुम ऑफिशियली लिमिटेड एडिशन बन गए हो। और बर्थडे हो या नॉर्मल डे हो, केक खाने का रीजन ढूंढना बस एक टैलेंट की तरह है। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें अपने बर्थडे शाउटआउट्स देने हैं खुद के लिए या किसी और के लिए तो डीएम कर सकते हो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Hey there, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings और अब हम सुनेंगे गोल्ड आजकल क्या कर रहा है.
1: Raj was wishing everyone happy and healthy morning. गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,080 $4,080 पर ट्राउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं. हम आपको रोज सुबह गोल्ड की मार्केट ट्रेंड्स के साथ अपडेट कराते हैं. जैसे पिछले साल आज ही के दिन अबाउट $3,300 गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे थे और इस साल के बिगनिंग में अबाउट $5,600 पर ट्राउंस ट्रेड कर रहा था. डेफिनेटली एक एंट्री पॉइंट बनता है इस करेक्शन के साथ जब गोल्ड $4,080 पर ट्राउंस ट्रेड कर रहा है. इससे पहले गोल्ड और वापस एग्रेसिवली अपवर्ड ट्रेंड ले, राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड बार्स में 1 ounce, 10 ounce, 100 grams और किलो बार पैम्प सर्टिफाइड गोल्ड एंड सिल्वर बार्स में इन्वेस्ट करने के लिए राज ज्वेल्स की टीम के साथ कनेक्ट करें. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग.
0: गोल्ड का हाल चाल पता किया हमने अभी के अभी मिर्ची मॉर्निंग्स पर सिर्फ और सिर्फ प्रिसला के साथ. मुझे फॉलो कर लो इंस्टा और एक्स पर भी. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप करना है तो 9033 मिर्ची इज माई नंबर. दैट्स 9033 6472 44. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे

में गाँव है रेला ऊंचा पाँव यू पटका है ये देसी का मेला कैसा रहा यकायकी नाचो नाचो नाचो नाचो अरे धूम धूम थिरके जा पाँव में जान जगा

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में और ये है इस घंटे की टॉप 3 अपडेट्स ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले अमेरिका में विस्कॉन्सिन के एक 69 ईयर ओल्ड जेंटलमैन ने स्टोर जाने के लिए कार नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। जब पुलिस ने पूछा क्यों तो उनका सिंपल सा जवाब था कि ड्राइव बहुत लंबी थी। अथॉरिटीज ने कंफर्म किया है कि सारे रूल्स फॉलो किए गए हैं। नंबर 2 पर कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन सौरव दास ने क्लेम किया है कि कुछ यूट्यूबर्स एंड मीडिया चैनल्स उनके घर में घुस के अंदर के विजुअल्स दिखा रहे हैं। उन्होंने इसे अपनी और अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए सीरियस कंसर्न बताया है। अभी इस मैटर पर उनके क्लेम्स सामने आए हैं, लेकिन अगर इस मैटर में कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स या इन्वेस्टिगेशन होता है तो आई विल कीप यू पोस्टेड। एंड लास्टली, हार्ट ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन फ्रॉम थाईलैंड, 24 ईयर ओल्ड फुटबॉलर सोफवान अहवे लॉस्ट हिज लाइफ आफ्टर बीइंग स्ट्रक बाय लाइटनिंग ड्यूरिंग अ मैच। Several others were also injured and received medical treatment. It's a sobering reminder that nature can change everything in a split second. Our condolences to everyone affected. Aur bas, that's it for Mirchi Hour Ka 3. Mujhse connect karne ke liye, Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X. That is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number hai 9033Mirchi. That's 9033-647-244. Stay tuned and stay hot.

0: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स का राशि जोन. देखते हैं कि आज क्या कहते हैं हमारे सितारे.
1: मिर्ची राशि जोन
0: इट इज यानी कि मेष राशि. हेल्थ और सेविंग्स दोनों पर फोकस करो. नया इन्वेस्टमेंट होल्ड करो. पहले वॉलेट की हेल्थ का चेकअप ले लो थोड़ा सा. लकी कलर फॉर यू इज क्रिम्सन रेड. लकी नंबर इज 9. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, सरप्राइजेस तुम्हारे फेवर में है. एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज या प्लान तुम्हारी स्माइल का रीजन बन सकता है. लकी कलर फॉर यू इज लाइट ग्रीन. लकी नंबर इज 6. जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, ऑफिस में पेशेंस तुम्हारा सुपर पावर है. गॉसिप से दूर रहो, ग्रेस के साथ स्कोर करोगे तुम. कलर इज येलो. लकी नंबर इज 5. कैंसर यानी कर्क राशि, करियर के स्पीड ब्रेकर्स धीरे धीरे हट रहे हैं. बॉस साइलेंटली नोटिस भी कर रहे हैं, तो बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करो. लकी कलर इज सिल्वर. लकी नंबर इज 2. लियो यानी कि सिंह राशि, आज आइडियाज पिच करने का परफेक्ट डे है. इनबॉक्स भी क्लीन करो और घर का वो बाद में करेंगे वाला कॉर्नर भी क्लीन करो. क्लीन रूम इज इक्वल टू क्लीन मूड. लकी कलर फॉर यू इज येलो. लकी नंबर इज 5. वर्गो यानी कन्या राशि, आज इम्पल्स शॉपिंग और इम्पल्स डिसीजन दोनों से डिस्टेंस बना के रखो. थोड़ा सा पेशेंस, बहुत सारी पीस तुम्हें मिलने वाली है. लकी कलर इज नेवी ब्लू एंड लकी नंबर इज 5. अभी तक अगर तुम्हारी राशि नहीं आई है, दैट मींस आई विल ब्रिंग राशि जोन नंबर 2 इन जस्ट अ व्हाइल. तब तक तुम्हारे लिए मिर्चीदार बैंगर्स मैं प्ले करती हूँ. तुम जाओ मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर भी नोट कर लो, 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: प्रिसिला तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर। ये रहा राशि जोन पार्ट टू।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लीब्रा यानी कि तुला राशि, आज तुम्हारा चार्म फुल वॉल्यूम पर है। नेटवर्किंग हो, डेट हो, क्रिएटिव आइडिया हो, शाइन करने का टाइम तुम्हारा ही है। लकी कलर फॉर यू इज पेस्टल पिंक। लकी नंबर इज 7। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, किसी की हेल्प करोगे तो गुड कार्मा डबल स्पीड से रिटर्न आएगा और साइड हसल का भी एक इंटरेस्टिंग क्लू मिल सकता है। लकी कलर फॉर यू इज डीप मरून। लकी नंबर इज 9। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, आज फीडबैक को पर्सनली मत लेना, प्रोफेशनली लेना, हो सकता है वही तुम्हारा नेक्स्ट लेवल अनलॉक कर दे। लकी कलर फॉर यू इज पर्पल। लकी नंबर इज 3। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट्स को म्यूट कर दो, हर डिबेट जीतना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी पीस ही ट्रॉफी होती है। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक। लकी नंबर इज 8। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, माइंड क्रिस्टल क्लियर है, करियर प्लानिंग, फ्यूचर गोल्स और स्मार्ट मनी डिसीजंस के लिए ग्रीन सिग्नल है। लकी कलर फॉर यू इज ब्लू। लकी नंबर इज 4। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसीज यानी कि मीन राशि, दिल की हार्ड ड्राइव थोड़ी सी क्लीन करो यार, किसी ट्रस्टेड दोस्त से बात करो या फिर जर्नल में लिखो, इमोशनल बैगेज भी कभी कभी डिलीट करना पड़ता है दोस्त। लकी कलर फॉर यू इज सी फॉर्म ग्रीन। लकी नंबर इज 7। एंड दैट वॉज योर राशि जोन पार्ट टू। ये याद रखना, स्टार्स जो है ना वो डायरेक्शन देते हैं तुम्हें, डेस्टिनेशन पर तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में और सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। अभी मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

जाना चाहता है। उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना। प्यार

बस गाइस, आज का मिर्ची मॉर्निंग्स जो है यहीं पर रैप अप होता है। मेरा नाम है प्रिसिला, और अगर तुम्हारे कम्यूट में आज एक स्माइल मेरी वजह से आई है, ट्रैफिक थोड़ा सा बेयरेबल लगने लगा या ऑफिस पहुंचने से पहले मूड थोड़ा सा इतू सा बेटर हो गया है, तो मेरा मिशन तो अकम्पलिश हो गया है। लेकिन अभी एक चीज और बाकी है। जाने से पहले तुम्हें क्विक अपडेट देकर जाती हूँ। अगर तुम हेल्थ केयर फील्ड में करियर बनाना चाहते हो या करियर स्विच का सोच रहे हो, तो एम्स एजुकेशन के साथ फ्लेबोटमी टेक्नीशियन बनने की ट्रेनिंग सिर्फ एक महीने में शुरू की जा सकती है। प्रोग्राम्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑन कैंपस भी। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करो 9082222 या फिर विजिट करो aimseducation.edu पर। हो सकता है आज का एक डिसीजन कल की नई करियर स्टोरी बन जाए। और हाँ, रेडियो ऑफ हो सकता है, लेकिन बग कभी ऑफ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इंस्टाग्राम और एक्स पर मुझसे कनेक्टेड रहो। मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल के लिए डाटा बाबा है, मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस एंड सेम फ्रीक्वेंसी। यू स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: बचपन में ना जहाँ कहीं मुझे ट्विन्स के बारे में पता लगता था कि वो मेरे आसपास एग्जिस्ट करते हैं, आई यूज्ड टू बी रियली एक्साइटेड टू सी देम।
1: सारा ज़माना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. Yes, the concept of twins ना, it used to be very, very new for me. क्योंकि इतने आम तरीके से हमें twins देखने को नहीं मिलते थे ना. हमें जो देखने को मिलता था 90s की movies में, that was डबल रोल। ट्विन्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता था हमको, हमको बस ये पता था कि एक बंदा एक दुनिया में जी रहा है और एक बंदा दूसरी दुनिया में जी रहा है, लेकिन दोनों की शक्लें एकदम सेम है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि वो ब्लड रिलेटेड भी नहीं है, ट्विन्स भी नहीं है, भाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों की शक्लें एक दूसरे की जैसी बिल्कुल डिटो कट कॉपी पेस्ट है। तभी तो 90s के बॉलीवुड ने ऐसे थोड़ी ना दिल में घर कर लिया था, जहां हमें डबल रोल का कॉन्सेप्ट पहले पता लगा और ट्विन्स का कॉन्सेप्ट बाद में पता लगा बॉस। तो चलो फिर आज ना मैंने सोचा है कि मिड डे मोहब्बत में बॉलीवुड की उन फिल्मों के बारे में बात करते हैं जहां पर डबल रोल देखने को मिले थे। और बॉलीवुड में ये कोई बड़ी बात थी कि 90s के दौर में हमें डबल रोल देखने को ना मिले किसी फिल्म में, हर दूसरी तीसरी फिल्म में डबल रोल हुआ ही करता था बॉस। तो आज कौन कौन सी फिल्में आर ऑन द लाइन आपको पता लगेगा इन अ वाइल, लेकिन अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कह देती हूँ, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: दो जुड़वा बहनें, जिनमें से एक बिल्कुल सीधी सादी और दूसरी एकदम तेज दरार। एक जो थी वो महलों में रहती थी लेकिन ऐश नहीं करती थी, दूसरी जो थी वो बस्ती में रहती थी लेकिन आराम से ऐश करती हुई रहती थी। और ये जो फिल्म है ये है लाइन में लगी हुई, बिकॉज आज डिस्कस होने वाले हैं बॉलीवुड के डबल रोल्स। Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and the movie that I'm talking about is चालबाज। ये वो चालबाज है which was most talked about in the 90s। श्रीदेवी ने क्या काम किया ना, and as a double role वाला character, उन्होंने और ही धमाकेदार काम किया। मतलब श्रीदेवी में भी एक पर एक मुफ्त। But you know, इस मूवी के पीछे एक बड़ी बढ़िया सी कहानी है और वो कहानी बोनी कपूर से रेलेवेंट है। Of course, at that time, बोनी कपूर और श्रीदेवी का कोई खास लेना देना नहीं था, लेकिन at that time, अनिल कपूर और बोनी कपूर, इन दोनों ही लोगों को जब पता लगा कि चालबाज सनी देओल के साथ अनाउंस हो गई है, तो ये दोनों पहुंचे सीधे फिल्म मेकर्स के पास। अब हुआ ये था कि ये वो दौर था जब बोनी कपूर और अनिल कपूर फॉर सर्टन रीजंस बिल्कुल फिल्में नहीं ले रहे थे। उन्होंने जितना भी साइनिंग अमाउंट अगर किसी फिल्म का लिया भी था ना, वो भी वापस दे दिया। लेकिन इसी दौरान जब इन्हें चालबाज के बारे में पता लगा, तो ये प्रोड्यूसर्स के पास पहुंचे कि यार अनिल कपूर को साइन कर लो इस फिल्म के लिए और सनी देओल को बाहर कर लो। जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं, सनी देओल ने इतनी अच्छी और हिट फिल्म दी है पाप की दुनिया, उसी के बाद तो हमने सनी देओल को इस फिल्म के लिए लिया है। लेकिन अनिल और बोनी कपूर तो अपने प्राइसेस भी कम करने के लिए तैयार हो गए, ताकि प्रोड्यूसर जो है वो टेम्प्ट हो जाए कि सनी देओल को बाहर कर दें और अनिल कपूर को इन। फिर भी प्रोड्यूसर नहीं माने और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सनी देओल को ही रखेंगे इस फिल्म के लिए, क्योंकि उन्होंने सनी देओल के साथ तो 3 फिल्म्स का एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था। सो ही हैड नो इंटेंशन ऑफ ड्रॉपिंग हिम आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। और यहाँ अनिल कपूर, जिनको लगा था कि ये फिल्म उनके हाथ में आएगी, वो आई नहीं। एक तरफ अनिल कपूर और बोनी कपूर इस बात को लेकर सैड हो गए थे, और दूसरी तरफ इस फिल्म के डायरेक्टर पंकज पारेषर वाज आल्सो सैड वंस अपॉन अ डे ड्यूरिंग द शूट ऑफ दिस फिल्म। हुआ ये था कि वो जो रोहिणी हतंगड़ी जी के साथ सीन नहीं था श्रीदेवी का, जहां पर वो रोहिणी जी के चेहरे को एकदम पोत देती है बुरी तरीके से, वेल उस सीन के टाइम पर द डायरेक्टर पंकज पारेषर वाज नॉट वेरी हैप्पी विद द मेकअप जो रोहिणी जी का किया गया था। वो मेकअप वैसा लग ही नहीं रहा था जैसा लगना चाहिए था। तो हुआ ये कि श्रीदेवी ने खुद डिसाइड किया कि वो अपना मेकअप किट लाएंगी और फिर खुद ही रोहिणी जी का फेस जो है उसको पेंट करना शुरू कर देंगी। तो जो हम ये सोच के बैठे थे आज तक कि रोहिणी जी का जो पेंट फेस हुआ हुआ है वो किसी मेकअप आर्टिस्ट ने किया होगा और श्रीदेवी सिर्फ एक्टिंग करी है उनका मेकअप करने की, तो ना जी, वो मेकअप श्रीदेवी ने ही किया था रोहिणी जी के चेहरे पर। इसे कहते हैं श्योर प्रोफेशनल। और सीता गीता की ये रीमेक हम सब के दिलों में घर कर गई थी, नहीं क्या? यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा, मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अच्छा ये बताओ एक और एक क्या होते हैं, अगर आपकी बॉलीवुड की नॉलेज अच्छी है तो आप बोलोगे 11 और अगर आपकी मैथ की नॉलेज अच्छी है तो आप बोलोगे 2, लेकिन मैं बोलूंगी जुड़वा।
2: क्योंकि ये कौन बोला?
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा और मिडडे मोहब्बत पर आज मेरे यारा हम बात कर रहे हैं 90s की वो फिल्में जहां पर डबल रोल थे, यानी कि एक के साथ एक मुफ्त, और उसमें से एक मेरी वन ऑफ द फेवरेट इज जुड़वा। मतलब मैंने 2 तो नहीं देखी, लेकिन मैं 1 में इतनी खोई हुई थी ना कि मुझसे 2 देखी नहीं गई। एक्चुअली बात ही थी, मगर यार मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर जुड़वा में सलमान खान ना होते तो क्या होता, मुझे ये फिल्म शायद इतनी पसंद भी नहीं आती। आई वॉज अ डाई हार्ड सलमान खान फैन एट दैट टाइम। हाँ, लेकिन एट दैट टाइम एक्चुअली ये फिल्म सलमान खान करने भी नहीं वाले थे, ये फिल्म तो गोविंदा करने वाले थे। एंड ही वाज डूइंग दिस फिल्म विद अ फिल्म मेकर जिनका नाम था नंदू तोलानी, एंड डेविड धवन वाज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म ऑफ कोर्स। लेकिन सलमान खान को जब इस प्रोजेक्ट के बारे में पता लगा तो उन्होंने गोविंदा से रिक्वेस्ट करी कि यार प्लीज हैंड ओवर दिस प्रोजेक्ट टू मी एंड साजिद नादियाडवाला। गोविंदा ने हाँ कर दी एंड दिस इज हाउ सलमान एंडेड अप डूइंग जुड़वा। हालांकि डेविड धवन जो थे उनको बड़ा डाउट हुआ करता था कि सलमान इस तरीके की फिल्म पुल आउट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉमेडी की जरूरत थी यार, और बेतहाशा कॉमेडी की जरूरत थी, वो भी डबल रोल के साथ। ये सलमान खान का पहला डबल रोल था यार, तो डेविड धवन थोड़े से नर्वस थे इस चीज को लेकर। लेकिन जब उन्होंने फिल्म का आउटपुट देखा तो वो खुद हैरान थे कि ये सलमान खान ने क्या कर डाला यार। इनफैक्ट सेट्स पर ये मजाक तो क्रू मेंबर्स भी किया करते थे कि कभी कभी सलमान खान अपने कैरेक्टर राजा की एनर्जी के साथ प्रेम के सीन्स की शूट्स कर लिया करते थे, क्योंकि इन दो कैरेक्टर्स, एक टपोरी स्टाइल राजा और दूसरा मासूम सा प्रेम, इन दोनों ही कैरेक्टर्स का जो शिफ्ट होता था वो बड़ा ट्रिकी हुआ करता था। तो ऐसा भी हुआ करता था। हे बाय द वे, आपको एक अंदर की बात बताऊं, इस फिल्म में रंभा जो सीधे साधे सलमान खान के ऑपोजिट हैं, आपको पता है उनकी आवाज उनकी नहीं है, तबू ने उनकी आवाज इस फिल्म में डब की थी। हाँ जी, कमिंग अप मोर इन्फोज ऑन 90s की डबल रोल वाली फिल्में इन अ वाइल, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कितने मजे लिए थे ना जब हमने DD1 पे किशन कन्हैया देखी थी, और कितने मजे लिए थे हमने उस बात पर जब चालू वाला अनिल कपूर जो था वो घर के अंदर था और घर वालों की बैंड बजा रहा था। इसीलिए तो सूट बूट में आया था कन्हैया बैंड बजाने को। Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, पर्दे के ऊपर जो था वो तो हमने बड़े मजे ले लेकर देखा, लेकिन पर्दे के पीछे जो हो रहा था वो ये था कि अनिल कपूर बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे थे अपने इन दोनों किरदारों को एक साथ निभाने के लिए, बिकॉज इट वॉज हार्ड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू कैरेक्टर्स ना, एक किशन जो की इनोसेंट सा बंदा है और एक कन्हैया जो बिल्कुल ही स्ट्रीट स्मार्ट बंदा है और ऐसी की तैसी कर देता है लोगों को। Well, ये कहा जाता है कि वो अपने वॉइस मॉड्यूलेशन प्रैक्टिस किया करते थे, उठने बैठने के तौर तरीके अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस किया करते थे ताकि वो ये डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सी बॉडी लैंग्वेज किशन की है और कौन सी बॉडी लैंग्वेज कन्हैया की है, और ये सब वो हफ्तों हफ्तों तक करते रहे। राकेश रोशन ने लेटर एक किसी इंटरव्यू में ये बात कही थी कि किशन कन्हैया की सक्सेस ने उन्हें वो कॉन्फिडेंस दिया जिसकी वजह से वो और बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाए, जैसे कि करण अर्जुन एंड देन इवेंचुअली कहूना प्यार है। एंड हे, बाय द वे, इन दोनों ही फिल्मों में राकेश रोशन ने डबल रोल के कॉन्सेप्ट से ही फिल्म बनाई है। आई थिंक उनको ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि डबल रोल का कॉन्सेप्ट डबल पैसे भी कमाकर दिखाता है बॉक्स ऑफिस पर। और ये बात बिल्कुल गलत भी साबित नहीं हुई। हाँ, करण अर्जुन और कहो ना प्यार है दोनों ही ब्लॉकबस्टर हिट थी, है कि नहीं? यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: एज अ काजोल फैन सिर्फ मैं ही नहीं, और भी कई सारे लोग इस फिल्म के लिए बड़े एक्साइटेड थे, क्योंकि ये फिल्म काजोल की शादी के बाद की पहली फिल्म थी, कुछ खट्टी कुछ मीठी।
2: क्योंकि ये कौन बोला?
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मिडडे मोहब्बत पर उन फिल्मों की चर्चा हो रही है जहां पर डबल रोल देखे गए हैं, और उनमें से एक फिल्म थी कुछ खट्टी कुछ मीठी। हालांकि ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कुछ बहुत धमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी ये फिल्म लोगों को बड़ी पसंद आई है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि काजोल का कैरेक्टर ही ऐसा था यार, इतना क्यूट कैरेक्टर प्ले किया था उन्होंने इस फिल्म के अंदर। शी प्लेड द रोल ऑफ एक्चुअली टू पीपल, एक टीना और एक स्वीटी। टीना जो कि बहुत ही स्वीट शाय एंड ओबीडियंट थी, एंड स्वीटी जो बोल्ड मॉडर्न और एकदम ही आउटगोइंग मुंह फट जैसी कि काजोल हैं। एंड दिस वाज वन ऑफ हर रेयर डबल रोल फिल्म्स, क्योंकि दुश्मन में भी उन्होंने डबल रोल प्ले किया था, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं। लेकिन हाँ, दिस वाज अ बिग चैलेंज जिनको कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस भी किया और एंजॉय भी किया, बिकॉज शी वाज प्लेइंग टू ऑपोजिट पर्सनालिटीज। काजोल की एनर्जी शूटिंग के दौरान इतनी जबरदस्त थी कि वो एक सीन किया करती थी, अपना कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम जो था उसको चेंज किया करती थी, हेयर मेकअप सब कुछ बदल जाया करता था, और फिर वो अपने ट्विन कैरेक्टर के रोल में आ जाया करती थी, ऑल इन द सेम डे। इनफैक्ट क्रू तो इस बात का भी मजाक उड़ाया करता था कि काजोल डबल शिफ्ट्स में काम कर रही हैं, व्हिच वाज नॉट एट ऑल रॉन्ग। एंड इसी के साथ साथ देयर वाज अ लॉट ऑफ फन दैट वाज हैपनिंग ऑन द सेट्स, सो मच सो दैट कि कुछ इमोशनल सीन्स ऐसे थे जहां पर काजोल अपने जोक्स ही मारे जा रही थी, जिसकी वजह से होता ये था कि सब हंस दिया करते थे, और ऋषि कपूर स्पेशली हंसते ही रहा करते थे, और डायरेक्टर को बार बार टेक लेना पड़ रहा था।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हालांकि डुप्लीकेट लोगों को बहुत ज्यादा पसंद तो नहीं आई थी, लेकिन मुझे बड़ी पसंद आई थी बिकॉज ऑफ द सोल रीजन यार कि इसमें शाहरुख खान थे, वो भी एक नहीं दो दो। हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मिडडे मोहब्बत पर मेरे यारा उन फिल्मों की चर्चा की जा रही है जो 90s अर्ली 2000 के दौर में बनी और डबल रोल लेकर बनी। वो कॉन्सेप्ट जो आजकल तो हमें देखने को ही नहीं मिलता यार, है ना। थोड़ा सा कम ड्रामेटिक हो गए हैं हम लाइफ में, लेकिन एट दैट टाइम बड़े ड्रामेटिक हुआ करते थे यार। और इसी दौर में बनी डुप्लीकेट, जहां पर शाहरुख खान दो रोल्स प्ले कर रहे थे, एक मन्नू का और एक बबलू का। लेकिन मजेदारी वाली बात तो ये थी कि शाहरुख खान ये जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ किया करते थे ना एक रोल से दूसरे रोल के अंदर, तो वो सेट्स पर भी यही कहा करते थे कि यार उनके दिमाग में ना दो चिप्स हैं, एक बबलू की और एक मन्नू की, तो वो उन चिप्स को स्विच करते रहते हैं सो दैट उन कैरेक्टर्स को वो प्ले कर पाए। और सेट्स की एक बात है जो क्रू मेंबर्स कहा करते थे कि शाहरुख खान कभी कभी ये भी किया करते थे मजाक मजाक में कि वो जो विलन वाली एनर्जी थी ना उसको पूरे सेट पर कैरी किया करते थे ऑफ द कैमरा, लोगों को चौंकाने के लिए और फिर सबको हंसाने के लिए। और अगर हंसने की बात की जाए तो जूही चावला भी कोई कम नहीं थी। वो शाहरुख खान की बातों पे इतना हंसा करती थी, इतना हंसा करती थी कि भाई एक टाइम तो ऐसा आया कि जब ये गाना शूट हो रहा था ना एक शरारत, उस टाइम पर उनकी हंसी रुकी नहीं रही थी। इवेंचुअली उसकी वजह से हुआ ये कि इस गाने में इतने रीटेक्स दिए गए और लिए गए कि इसका जो स्केड्यूल है वो ही स्ट्रेच हो गया। एक व्हाट्सएप मैसेज और दूसरी हंसी, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कहीं भी आ सकती है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इज़ हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सुनील शेट्टी कॉमेडी भी कर सकते हैं, ये बात तो हमको तब पता लगी जब हमने देखी गोपी किशन।
2: क्योंकि ये कौन बोला?
3: मेरे दोनों बाप।
1: और इसी फिल्म से तो ये फेमस डायलॉग आया था जो आज तक भी एपिक लाफ्टर की वजह बन गया है। हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मिड डे मोहब्बत पर 90s के डबल रोल्स की चर्चा हो रही है, जिसमें से सुनील शेट्टी का ये डबल रोल तो किसी को नहीं भूलता यार, एक गोपी का और एक किशन का। बोलो गोपी, टेल टेल। वेल, इससे पहले एक्चुअली सुनील शेट्टी जो थे ना, वो एक्शन हीरो ही थे, तो इसीलिए सबको डाउट था यार कि ये कॉमेडी भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या कॉमिक टाइमिंग थी यार उनकी, मतलब वो मास फेवरेट हो गए थे इस फिल्म के बाद। लेकिन कॉमेडी के साथ साथ इस फिल्म में एक्शन भी था, और एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान हुआ ये था कि सुनील शेट्टी को चोट लग गई थी बुरी तरीके से, लेकिन फिर भी उन्होंने शूटिंग डिले नहीं करी एंड ही कैरीड ऑन विद हिज इंजरी एंड द शूट एज वेल। लेटर ऑन ड्यूरिंग एन इंटरव्यू जब सुनील शेट्टी से पूछा गया कि गोपी का कैरेक्टर उनके कैरेक्टर से ज्यादा मेल खाता है या किशन का, तो उन्होंने किशन के लिए ऑप्ट आउट किया था, क्योंकि ऑफ कोर्स गोपी इतना भोला भाला, दुनिया खा जाए उसको, कौन गोपी बनना चाहेगा उस दौर में भी और आज के भी दौर में। लेकिन सुनील शेट्टी गोपी बने, और क्या गोपी बने। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स ऑल।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Meethi Supari.
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हें याद करते ही ना एक खुशबू सी आती है जो तुम्हारा पैकेट खोलते ही आया करती थी। भीनी भीनी सी, मीठी मीठी सी। तुम्हें खाना हम बच्चों को वैसे अलाउड नहीं था और अक्सर मैं तुम्हें खरीदती भी नहीं थी, लेकिन कुछ दुनिया की परवाह ना करने वाले क्लासमेट्स के बैग में तुम अक्सर मिल जाया करती थी। और जब कभी कभी तुम्हें चखती थी ना तो मजे और ज्यादा आया करते थे, क्योंकि जो कम होता है उसकी वक्त भी तो ज्यादा हो जाती है। क्या बोलती हो? तुम्हें जुबान पर रखना बुरा माना जाता था और कहते थे कि तुम सेहत को हानि पहुंचाती हो, लेकिन आज मेरी याद में तुम आंखों में पानी पहुंचाती हो, क्योंकि तुमसे जुड़े किस्से बचपन की शैतानी और दोस्तों के किस्सों के याद दिलाते हैं। थी मेरी एक दोस्त जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आया करते थे और सब उससे इसी वजह से दूर भाग जाया करते थे, लेकिन वो मस्त रहने वालों में से थी। तुम अक्सर उसी के पास पाई जाती थी और क्लास में सो कॉल्ड अच्छे बच्चे उसके बारे में खुसुर पुसुर किया करते थे। आज तुम्हें याद करते करते उसकी याद आ गई यार, कि उसके साथ जो होता था वो बॉयकॉट नहीं तो क्या था। मुझे भी बोला जाता था कि तुम अच्छी बच्ची हो, उसके टच में मत रहा करो। आज सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि यार इतनी कम उम्र में ये सब हमें सिखाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन आज मुझे ना इस बात का भी ख्याल आता है कि कितनी हिम्मत थी यार मेरी उस दोस्त में जो ये सब जानकर भी अपनी दुनिया में मस्त रहने की कोशिश किया करती थी। पता नहीं कि वो वाकई में स्ट्रांग थी या स्ट्रांग होने की एक्टिंग किया करती थी। आज तक नहीं पता लगा मुझे इस बात का। स्कूल बदला तो ना उससे टच में रही और ना तुमसे इतनी ज्यादा मुलाकात होती थी फिर, क्योंकि तुम्हें खिलाने वाला कोई था नहीं ना, लेकिन तुम दोनों ही मेरे ख्यालों में तब भी थे और आज भी हो। वो मुस्कुराती हुई और तुम महकती हुई, तुम्हारी भीनी भीनी खुशबू में आज भी खोई हुई तुम्हारी पुरानी दोस्त सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: Sara ka diwana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: सोनू निगम, श्रेया घोषाल एंड सलीम मर्चेंट की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म कुर्बान इज कैसेट के साइड ए का पहला गाना।
3: मिर्ची 90s कैसेट।
2: वेल, द ट्रैक जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक गाना नहीं है, दिल का सुकून भी है।

बात तो सच्ची है कि जो हम आम लोग हैं अपनी आम जिंदगी में वो लव्स कहीं कहीं से ढूंढ कर नहीं ला पाते हैं जो गानों में हमें मिल जाते हैं। नाउ ये गाना इतना खूबसूरत है और इतनी खूबसूरती से ये ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा है कि उसने हमें उस इंसान से मिला दिया जिसे मिलने के बाद हमें सुकून मिलता है। रूह को सुकून मिलने वाले लोग कितने कम मिलते हैं ना जिंदगी में, और जब वो मिल जाए तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने के लिए ये गाना बिल्कुल एप्ट है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, हमें लव्स नहीं मिल पाते हैं, हमें बस महसूस हो रही होती है कोई बात, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसे लफ्जों में कैसे बयां करें। वहीं ये गाना आता है जो ये कह रहा है कि तेरी बाहों में ये जिस्म खिल गया, तेरी सांसों में चैन मिल गया, कैसे रहें अब हम जुदा। वही ये गाना हमारी मदद कर देता है क्योंकि इस गाने में यही तो शुक्रिया अदा किया गया है कि यार किस तरीके का सुकून मिला है एक इंसान से मिलने के बाद कि उसकी बाहों में ये जिस्म खिल गया है, उसकी सांसों में चैन मिल गया है, और कैसे रहा जाए उस इंसान से अब जुदा। तेरे पास हम इतने हुए, तेरे ख्वाब अपने हुए, ऐसे हुए अब हम फिदा। और इसी बात पर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए कहा गया है कि ऐसी उसकी इनायत, मिट गई हर शिकायत, हम पे मेहरबान दो जहां। एंड दिस सॉन्ग इज ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड, जो हमारी जिंदगी में प्यार के आने पर हम महसूस कर पाते लेकिन उसे कह नहीं पाते। तो बस जी, ये गाना आपके दिल की बात को कंप्लीट करते हुए आप ही के लिए लगाती हुई जा रही हूँ, और आपसे कहती हूँ अब कि हम है रहे प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा, और यहाँ के अलावा मुझे मिल जाइएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, 'cause इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये दोनों एक्टर्स ना ऑलरेडी साउथ में बहुत बड़े स्टार्स थे, लेकिन उन्हें लगता था कि शायद हिंदी इंडस्ट्री में वो इतना बड़ा मार्क नहीं बना पाएंगे। पुरानी जीन्स में हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया। और आज मैं जिस फिल्म की बात कर रही हूँ ना, वो फिल्म मैं एक्चुअली मैं देखना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि उस फिल्म को देखने के बाद ना, वो कहते हैं हैंगओवर होता है, एक्चुअली मैं इस फिल्म को देखने के बाद ना मेरा मूड ऑफ होता है। तो जब भी ये फिल्म बहुत सारे यू नो चैनल्स पे आती रहती है, आई ट्राई नॉट टू वॉच दिस मास्टरपीस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सदमा। कमल हसन और श्रीदेवी जी ऑलरेडी साउथ के बहुत बड़े एक्टर्स थे, लेकिन हिंदी फिल्म में दोनों ने एक साथ पहली बार इसी फिल्म से काम किया था। आज इसी फिल्म की बातें होंगी श्रेया के साथ, एंड ऑफकोर्स सदमा के बहुत खूबसूरत गाने। तो बस कहीं भी मत जाना, कम बैक राइट हियर ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

गुलशन ग्रोवर तो फिल्म की सिर्फ शूटिंग देखने गए थे, उन्हें क्या पता था कि उन्हें इस फिल्म का इतना इम्पोर्टेंट रोल भी मिल जाएगा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और आज बात हो रही है फिल्म सदमा की, एक ऐसी फिल्म जिसका क्लाइमैक्स देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक ऐसी फिल्म जिसको मैं ना अगर किसी भी चैनल पे आ रही होती है मैं देख नहीं पाती हूँ। मतलब मुझे पता होता है कि इसका क्लाइमैक्स देख करके ना मेरा मूड एटलीस्ट फॉर अ कपल ऑफ डेज खराब रहेगा। हाँ जी, सो सदमा में गुलशन ग्रोवर विलन का रोल करते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनको कभी इस रोल के लिए अप्रोच नहीं किया गया था, ये तो बाय एक्सीडेंट था कि उनको ये रोल मिल गया। अब हुआ ये कि अनिल कपूर ऑलरेडी एक कन्नड़ मूवी के लिए शूटिंग कर रहे होते हैं और सदमा की शूटिंग ना वहीं कहीं उनके ही सेट के आसपास होती है, तो अनिल कपूर श्रीदेवी से मिलने चले गए थे वहां पर। जब वहां गए तो भाई फिल्म के जो कैमरामैन थे जिनका नाम था बालू महेंद्र, उन्होंने गुलशन ग्रोवर को देख करके अनिल कपूर से कहा कि अपने दोस्त से पूछो क्या वो इस फिल्म में विलेन का रोल करेगा। और सोचिए, अनिल कपूर ने जैसे ही पूछा, गुलशन ग्रोवर तो उस समय उनके पास खास काम नहीं था, उन्होंने झट से हाँ कह दी एंड दैट वाज हाउ ही लैंडेड इन द रोल। पुरानी जीन्स पे सदमा के गाने होंगे और सदमा की बातें विद मी श्रेया, कम बैक राइट हियर।

0: सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

यही फिल्म कमल हसन और श्रीदेवी जी ने पहले तमिल में की थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। सो ओरिजिनली दिस फिल्म वाज मेड इन तमिल, उसके बाद इसको हिंदी वर्जन में बनाया गया, टेकिंग अगेन द सेम एक्टर्स श्रीदेवी एंड कमल हसन। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा। लेकिन आपको पता है, हिंदी वर्जन बनाते समय श्रीदेवी काफी नाराज थी, और वो भी खुद से। उनको लगा कि तमिल वर्जन में ना वो और कमल हसन बहुत सारे सीन्स को इम्प्रूव कर पा रहे थे बिकॉज दे अंडरस्टूड द लैंग्वेज, लेकिन हिंदी क्योंकि श्रीदेवी की मदर टंग नहीं थी, उनको बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रही थी, तो श्रीदेवी सेट के हम बहुत सारे सीन्स को ना इम्प्रोवाइज नहीं कर पाए। जैसे डायरेक्टर बोलते गए हम बस वही करते गए, लेकिन अगर जैसा डायरेक्टर ने कहा सिर्फ उतना किया तो भी क्या खूबसूरत किया। सदमा रिमेन्स वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स ऑफ श्रीदेवी जी। मतलब इस फिल्म के बाद ना, अगर आप जब ये फिल्म देख लोगे तो आपको लगेगा कि श्रीदेवी कितनी मंझी हुई कलाकार थी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, इस फिल्म की बातें और गाने चलते रहेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, कम बैक राइट हियर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: द डर्टी पिक्चर विद्या बालन की याद है आपको? ये किस पे बनी थी? साउथ की सेंसेशनल एक्ट्रेस विद्या बालन पे। अब ये साउथ की एक्ट्रेस यानी सिल्क स्मिता उस टाइम पे एक्सट्रीमली पॉपुलर थी और क्राउड भर भर के जाता था सिनेमा हॉल में इनकी फिल्में देखने के लिए। तो भाई जब हिंदी फिल्म बना रहे थे डायरेक्टर बालू महेंद्र, तो उनको लगा कि उन्हें अब सिल्क स्मिता को ना हिंदी फिल्मों वालों से भी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, हिंदी फिल्म ऑडियंस को भी दिखाना चाहिए। तो ही वांटेड टू शो समथिंग सेंसेशनल बिटवीन द यू नो स्टोरी ऑफ कमल हासन एंड श्रीदेवी जी। सो उन्होंने ना साउथ की इंडस्ट्री की ये फैसिनेटिंग यंग गर्ल सिल्क स्मिता को लेकर के आए। सो इनका तमिल वर्जन वाली जो फिल्म थी उसमें तो बहुत ही अच्छा काम किया, और उसके बाद हिंदी फिल्म में जब वो लेकर के आए, दैट वाज हर इंट्रोडक्शन, सिल्क स्मिता का इंट्रोडक्शन टू हिंदी ऑडियंस। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, वापस आऊँ।
1: तुमको पता है, तुमको पता है इस कॉलेज के एक लड़के और लड़की में, यू नो व्हाट आई मीन,
2: माय गुडनेस, कौन है वो, क्या नाम है उनका?
1: तुमको बता देता हूँ लेकिन देखो यानी समझी,
2: ओफो, हद है, कान में बोलो।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: शायद तू ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

इस फिल्म से एज म्यूजिक कंपोजर अपनी शुरुआत की थी इलैयाराजा जी ने, और इसी फिल्म से अपना डेब्यू इलैयाराजा के असिस्टेंट बन करके पता है किसने किया था? डी ए आर रहमान। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा, यानी श्रीदेवी जी और कमल हासन की फिल्म। इसी फिल्म से ये दोनों द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स म्यूजिक कंपोजर्स हमें मिले थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। इस फिल्म की बातें और गाने बहुत सारे आज लेकर के आई हूँ, तो बस कहीं भी मत जाना।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और जब बात हो फिल्म सदमा की तो ना एक जगह चुप हो जाना चाहिए क्योंकि गाना ये आ रहा है। एंड इस गाने से, यानी इस फिल्म के गानों से इलैयाराजा जी ने अपना डेब्यू किया था, और उनके असिस्टेंट पता है कौन थे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इट वाज नन अदर देन एआर रहमान साहब। इतना खूबसूरत गाना ये सुदास जी ने गाया। कमिंग अवर राइट नेक्स्ट, सुरमई अखियों। ये गाना जो है श्रीदेवी को देख करके कमल हसन गाते हैं, और श्रीदेवी के चेहरे पे इतना इनोसेंस। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ये गाना शुरुआत से एंजॉय करो। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

बालू महेंद्र ने जब इस फिल्म का क्लाइमैक्स लिखा था तो उन्होंने बहुत सिंपल सा लिखा था कि कमल हासन श्रीदेवी को बस देख रहे हैं, ऐसी आंखों से देख रहे हैं, ऐसे इमोशंस के साथ देख रहे हैं कि बस अब तो मत जाना। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा, जिसका क्लाइमैक्स ओ गॉड रोंगटे खड़े कर देता है। और इसीलिए ना, जब भी ये फिल्म आती है किसी भी चैनल पे तो मैं देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि इसका क्लाइमैक्स ना मुझे 2-3 दिन तक मेरे दिल में एकदम जगह करके रहेगा, एंड यू नो आई विल फील वेरी वेरी सैड। सो बालू महेंद्र ने तो कोशिश की थी कि बस कमल हासन सिर्फ एक ग्लिम्स दे रहे हैं श्रीदेवी को, उनकी आंखों में है कि तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाओ, और श्रीदेवी चलती जा रही है। लेकिन इट वॉज कमल हासन हू सेड कि नहीं, ऑडियंसेस के लिए ये सिर्फ एक ग्लिम्स, एक एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ और होना चाहिए। एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन कमल हासन सेड कि मैं इस रोल, इस पूरे सीन को ना इम्प्रोवाइज करना चाहता हूँ। तो जो वो ट्रेन में बैठी हैं श्रीदेवी और कमल हासन उनको उछल उछल के दिखा रहे हैं कि ये शैतानियाँ हम लोग करते थे, ये मस्ती हम लोग करते थे, और श्रीदेवी उनको यू नो कुछ खाने को देती हैं कि अरे भाई लगता है यू नो ही इज़ लॉस्ट हिज माइंड, इसको कुछ खाने को दे दें, ये सब कमल हासन ने सोचा था। और ये ऐसा सीन निकला जिसकी वजह से ये फिल्म आज तक जानी जाती है। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, बस कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हट जाए।
1: हो जाए।

फिर से वो टाइम आ गया है जब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बिकॉज अगला गाना इज़ अ कल्ट सॉन्ग। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ सदमा की बात हो रही है, तो वो गाना ना हो जो जब भी हम थोड़ा सा डगमगाते हैं या ज़िंदगी से नाराज़ होते हैं, निराश होते हैं, तो ये गाना सबसे पहले जहन में आता है। सुरेश वाडकर की आवाज़ है, इलिया राजा की कॉम्पोजिशन है और गुलजार साहब ने लिखा था ये। यही गाना तमिल में, यानी जब ये फिल्म तमिल में बनी थी ओरिजिनली, तो ये तमिल की फिल्म थी जिसको हिंदी में फिर से बनाया गया था, यही गाना था पुंगात्रु पुथी नाथू, कुछ ऐसे करके, मैं ठीक से शायद प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ये वाला, ए जिंदगी गले लगा ले। कौन लिख सकता था ये गुलजार साहब के अलावा, कि हमने भी तेरे हर गम को गले से लगाया। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची

श्रीदेवी की सारी फिल्मों में से सबसे बेहतरीन मानी जाती है सदमा फॉर हर एक्टिंग स्किल्स। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, और जैसे दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, वैसे ही रोल रोल पे लिखा होता है एक्टर का नाम। एक्चुअली मैं ये रोल पहले करने वाली थी डिम्पल कपाटिया, बट एट दैट टाइम उनके पास ना बल्क में डेट्स नहीं थी इस फिल्म को देने के लिए। दो शी वॉन्टेड टू डू द फिल्म बिकॉज उनको स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी, तो उनको ना उस समय सागर के लिए रोपिन किया हुआ था सिप्पी साहब ने, एंड शी कुड नॉट गिव डेट्स फॉर दिस फिल्म। एंड देन केम श्रीदेवी जी, जिन्होंने इस रोल को चार चांद लगा दिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं ये फिल्म ना अगर किसी भी चैनल पे आ रही होती है ना, आई अवॉइड सीइंग दिस फिल्म, क्योंकि सदमा ना आपको एक सदमा दे के जाती है। इसका क्लाइमैक्स आपके साथ रहता है फॉर अ कपल ऑफ डेज। यू कीप थिंकिंग अबाउट द फिल्म, यू कीप थिंकिंग अबाउट कमल हसन, यू कीप थिंकिंग अबाउट श्रीदेवी जी। पुरानी जीन्स में इसी फिल्म की बातें, मैं

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

तमिल में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी इसका नाम था मुंद्रम पिराई, और लोगों का कहना है कि फ्रेम टू फ्रेम सेम फिल्म उठा करके रखी गई इन हिंदी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म सदमा की, जो सबसे पहले तमिल में बनी, उसके बाद इसको हिंदी में बनाया गया। सो अ लॉट ऑफ पीपल से, अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स ऑल्सो से कि ये ना ये रीमेक नाम की कोई चीज ही नहीं थी इसमें, इसमें एज इट इज फ्रेम टू फ्रेम काम कराया था। और इसमें भाई तमिल वर्जन में भी ऑफकोर्स श्रीदेवी और कमल हसन थे, लेकिन हिंदी में किसी हिंदी फिल्म के लिए दोनों एक साथ पहली बार काम कर रहे थे, एंड दैट वॉज सदमा। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें आज श्रेया के साथ होती रहेंगी। इनकेस आपको मुझे सदमा के बारे में कुछ बताना है, आई एम श्योर अगर आप रेट्रो फैन हैं आपने ये फिल्म देखी होगी, तो डू शेयर योर फीलिंग्स फेसबुक और इंस्टा पे। माय हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA विद लव।

सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मूवी के मेकर्स का ऐसा सोचना था कि सदमा फिल्म इतनी चलेगी नहीं। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ इस फिल्म ने तमिल वर्जन में तो बहुत कमाल किया था, लेकिन जब इसको हिंदी में बनाया जा रहा था ना तो सबके डाउट्स थे। डाउट्स इसलिए थे क्योंकि उस टाइम पे 1980s में एक तरफ बच्चन साहब की एक्शन फिल्में आ रही थी, दूसरी तरफ काका की रोमांटिक फिल्में आ रही थी, उसके बीच में इतनी इमोशनल फिल्म जिसका इतना डिप्रेसिव एंड हो। सो द मेकर्स थॉट कि भाई फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कमाल नहीं करेगी, व्हिच एक्चुअली हैपेंड। भाई बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा क्राउड उस समय नहीं आया, लेकिन हाँ इस फिल्म ने कल्ट का स्टेटस लिया। एंड स्पेशली आज के दौर में दिस फिल्म इज अ माइलस्टोन दैट एक्चुअली श्रीदेवी जी एंड कमल हसन अचीव्ड। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, कहीं भी मत जाना।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी गड्डी में बैठो और हवा बहुत अच्छी चल रही है। आज हाईवे पे जाने से पहले गाड़ी के शीशे नीचे करेंगे। Alright, आज का मेरा हाईवे हेट मैं उन दीवानों को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो अपने आप को सबसे बड़ा दीवाना मानते हैं अपने प्यार के लिए और कहते हैं
1: मुझसा नहीं
0: इस अंबर के नीचे। अगर आप ऐसे दीवाने हैं तो ये गाना आज आपको सेलिब्रेट करते हुए। रफी साहब की आवाज, मैं हूँ श्रेया, जाने का टाइम हो गया। विल सी यू टुमारो। इन केस मुझसे कुछ कहना है तो फेसबुक और इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव, ये है मेरा हैंडल। गुड नाइट।
1: दीवाना।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: लोगों के लिए बनाए हुए परसेप्शंस जब आपके दिमाग में ब्रेक होते हैं तो बड़ी अच्छी वाली फीलिंग होती है यार।
2: श्रुति, श्रुति,
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट करिश्मा कपूर इन स्पेसिफिक। भाई इनको 90s की ब्लॉकबस्टर क्वीन ऐसी ही नहीं बोला जाता है। उनकी एक्टिंग स्किल्स से लेके डांस परफॉर्मेंसेस एंड एवरी सिंगल थिंग दैट शी हैज डन इन हर फिल्मी करियर इज जस्ट अमेजिंग। और उनको जिन अवतार्स में हमने अब तक देखा है उसको एकदम से ब्रेक करते हुए एक डिफरेंट कैरेक्टर उठाया उन्होंने ऑफ रीटा ब्राउन। जिन लोगों ने सीरीज देखी है उनको पता होगा दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ब्राउन, जो OTT पे फिलहाल स्ट्रीम कर रही है। और इसी के साथ करिश्मा कपूर ने अपना OTT डेब्यू भी किया है। वेल उनके अलावा इस सीरीज में सोनी रजदान, जीशु सेन गुप्ता और सूर्य कुमार जैसे अमेजिंग एक्टर्स भी हैं। सीरीज को डायरेक्ट किया है अभिनय देव ने, जिन्होंने डेली बेली जैसी फिल्में भी हमें परोसी हैं। और अचानक से ब्राउन की इतनी सारी चर्चा इसलिए कर रही हूँ बिकॉज दिस नियोनॉइड थ्रिलर इज समथिंग जो आपको अपनी वॉचलिस्ट में जरूर से जरूर डालना चाहिए। एंड टू प्रूव दैट राइट, लेट मी रिवील दैट आज मेरे शो पे मिर्ची गिरफ्तार है इसी सीरीज की स्टार कास्ट, एंड ऑफ कोर्स उसके अलावा और भी बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी बॉलीवुड गपशप, ऑल इज लाइंड अप राइट हियर ऑन मिर्ची ऑन माय शो। मैं हूं आपके साथ श्रुति, सो यू बेटर स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

स्टार कास्ट एंड ऑफ कोर्स उसके अलावा और भी बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी बॉलीवुड गपशप, ऑल इज लाइंड अप राइट हियर ऑन मिर्ची ऑन माय शो. मैं हूं आपके साथ श्रुति, सो यू बेटर स्टे ट्यून्ड. इट्स हॉट.

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अगर आप पहली बार मेरा शो सुन रहे हैं देन लेट मी एक्सप्लेन। अभी टाइम हो चुका है टू फाइंड मिर्ची फिल्म ची थ्रू माई शो, एक नहीं दो, जहां मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ टू गो टू माई इंस्टाग्राम और वहां मेरे डीएम्स में स्लाइड इन करके अपना नंबर भेजिए ताकि मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत कर सकूं। तो सबसे पहले आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है आदि। लेट्स बिगिन। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल किसको बोलते हैं?
3: हेमा मालिनी।
0: हेमा मालिनी की फिल्म विद अमिताभ बच्चन जिसमें वो अपने बच्चों के घर रहने जाती हैं।
3: अच्छा वो क्या, बागबान।
0: ग्रेट। बागबान में अडॉप्टेड बेटा कौन है?
3: सलमान खान।
0: सलमान खान की फिल्म अदर देन तेरे नाम जिसमें उनका नाम राधे है?
3: वांटेड। वांटेड
0: वांटेड की फीमेल लीड का नाम क्या है?
3: आयशा टाकिया।
0: ग्रेट। आयशा टाकिया की फिल्म जिसमें आत्मा कार चलाती है?
3: टार्जन द वंडर कार।
0: ग्रेट। टार्जन में भूत किसका होता है?
3: अजय देवगन
0: किस फिल्म में अपनी बीवी को उसके लवर से मिलवाने ले जाते हैं?
3: हम दिल दे चुके सनम।
0: ग्रेट। हम दिल दे चुके सनम में सलमान की लवर कौन है?
3: ऐश्वर्या राय।
0: ऐश्वर्या राय की हिंदी फिल्म जिसमें वो चोर बनी है?
3: धूम।
0: कौन सा पार्ट?
3: ये सेकंड जो ऋतिक रोशन के साथ तो था।
0: धूम टू में हर लड़की के साथ शादी कौन इमेजिन कर लेता है?
3: क्या है उसका नाम, चोपड़ा कुछ उपरा है ना, वो हाँ। जो उसके साथ होता है बंदा, व्हाट हिज नेम, अबे अजय, अबे क्या चोपड़ा यार।
0: कोई बात नहीं यार, बट इतना अच्छा जो आपने इस गेम को यहाँ तक पहुँचाया उसके लिए आपको ये टैग देना तो बनता है।
1: मिर्ची फिल्म ची।
0: तो भाई आदि तो गेस नहीं कर पाए कि आफ्टर ऑल उस एक्टर का नाम क्या है। अगर आपको पता है देन यू नो द ड्रिल। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

0: हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: ठीक वैसे ही हर अच्छी सजी धजी फिल्म हमेशा हिट नहीं होती, अच्छी नहीं लगती। इसलिए आज पांच का पंच के लिस्ट के थ्रू मैं कुछ अंडररेटेड फिल्मों की बात कर रही हूँ फ्रॉम आर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। हाँ जी, पहले भी ये डिस्कशन चल चुकी है बट आज की लिस्ट एकदम तरोताजा फ्रेश है। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट मैं, मेरी पत्नी और वो। अब नंबर दो पे बात करते हैं लव शव ते चिकन खुराना, जो साल 2012 में आई थी, डायरेक्टेड बाय समीर शर्मा। देखो ये फिल्म ना 3 करोड़ के बजट पे बनी थी और इसने कलेक्ट किए 10 करोड़ से भी ज्यादा। इस फिल्म में कुणाल कपूर, हुमा कुरैशी, विनोद नागपाल और राजेश शर्मा जैसे लव्ड एक्टर्स हैं। बाकी एक फैमिली की प्राइड होती है राइट, जिसपे अगर आंच आए तो इंसान एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। कुछ ऐसा ही है इस मूवी का कॉन्टेक्स्ट, जहां अपने फैमिली को क्राइसिस से बचाने के लिए एक पर्टिकुलर रेसिपी की तलाश होती है, वो सीखने की कोशिश होती है एंड द मूवी रिवॉल्व्स अराउंड द सेम। इन शॉर्ट इट इज अ फुल ऑन एंटरटेनिंग कॉमेडी। मूविंग ऑन फिल्म रेनकोट की बात करते हैं ऑन नंबर 3, जो रिलीज हुई थी इन 2004, डायरेक्टेड बाय ऋतुपर्ण घोष। बाकी ये एक अडेप्टेशन है ऑफ द नॉवल द गिफ्ट ऑफ द मागी एंड वो वाली फीलिंग आपको पता है। मान लो आप अपने एक्स से मिलते हो, आप नॉस्टैल्जिया में चले जाते हो, बहुत सारी मेमोरीज जो आपकी पास्ट की रही हैं आप उसके बारे में बातें करते हो, बट एट द सेम टाइम आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है एक्चुअल वाली, हाँ वो आपके एक्स को ना पता चले, आप बहुत सारे झूठ बुनने लगते हो, उसका जाल बनाते हो। कुछ यही है इस फिल्म की कहानी भी, जिसमें ऐश्वर्या राय ने नीरजा का रोल प्ले किया है और अजय देवगन ने मनोज का। भाई साहब, एक ऑफ बीट फिल्म जिसमें इन दोनों का किलर परफॉर्मेंस है, डेफिनेटली अ ट्रीट टू वॉच। बाकी और दो मूवीज की बात बाकी है बाबू मोशाय, लेकिन ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। टिल देन यू एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी, जिसका नाम है श्रुति।

स्टेशन तेरे मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

फिश सैंडविच हैमबर्गर या बटर रोल, सबसे मैं हूँ टेस्टी, सुन ले मैं हूँ बेबी डॉल। गुस्सा तेरी गोली जैसा बोल तलवार से, दिल का शिकार कर हनी ज़रा प्यार।

0: अंडररेटेड होने में एक अलग ही क्लास है। श्रुति
1: श्रुति मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब देखो यार, बाबू मोशा है, जिस लेवल पे हिंदी सिनेमा में हर दूसरे फ्राइडे हमें कोई ना कोई नई फिल्म परोसी जाती है, उसमें से कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जिनको बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास रिकग्निशन तो नहीं मिलता, बट हाँ उन मूवीज ने हमारे दिल में एक स्पेशल जगह बना ली होती है। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी ही अंडररेटेड मूवीज की बात कर रही हूँ। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट मैं, मेरी पत्नी और वो। नंबर दो पे हमने लव शब्द चिकन खुराना की बात की। नंबर तीन पे रेनकोट की बात हुई। अब नंबर चार पे बात करते हैं फिल्म अक्टूबर के बारे में, जो साल 2018 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय सुजीत सरकार। बाकी इस फिल्म में वरुण धवन और बनीता संधु जो हैं वो लीड रोल्स में थे। एंड दिस इज अ कमिंग ऑफ एज ड्रामा फिल्म जिसमें बहुत ही खूबसूरती से रिस्ट्रेन किया गया है स्टोरी टेलिंग को, बिना किसी एरर के दो प्राइमरी स्पेसेस को। एंड माइंड यू, ये दो प्राइमरी स्पेसेस जो हैं वो हमारी जिंदगी के दो मेजर कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, उसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी में पिरोया गया है। अ डेफिनेट वॉच फॉर श्योर। मूविंग ऑन, नंबर पांच पे बात करते हैं फिल्म खोया खोया चांद के बारे में, जो साल 2007 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय सुधीर मिश्रा, जिसमें सुहाली खान, शाइनी आहूजा, विनय पाठक और रजत कपूर जैसे अमेजिंग एक्टर्स थे। बाकी यहाँ कहानी है एक रिबेलियस यंग राइटर की, जो बॉम्बे आता है अपना लक आजमाने के लिए इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री, बट देयर ही फॉल्स इन लव विद अ स्टारलेट एंड अपने आप को उस प्यार में कहीं खो देता है। फिर अपने आप को खोने के बाद जब वो एक्स्ट्रा जिससे इसको प्यार होता है वो जब ऊंचाइयां छूने लगती है, तब इन दोनों के लाइफ में जो बवाल मचता है इज व्हाट खोया खोया चांद टॉक्स अबाउट। अगर नहीं देखी है तो प्लीज इस मूवी को जरूर देख लेना। मीनवाइल, अगर ऐसी ही कोई अंडररेटेड फिल्म आपके दिमाग में है, देन प्लीज मेरे लिस्ट में उसको ऐड करो यार। MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से। मैं आपको फेसबुक या फिर इंस्टा पे मिलूंगी। मीनवाइल, एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति।